0: This is Radio Dhorbarahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Talchit.
2: Aile, Diusoko Ek Bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइम अहिले रातिको 10 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301
3: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार
4: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथ में
5: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा को एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौड़ा बीपी चोक
4: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम को लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461493004
3: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार

0: 103.8 अन्तरमन को आवाज
1: स्टूडियो टाइम अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर कर प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935001